यू मेरी चंदन है, भगवान मेरी पानी है, भगवान मेरा स्पिरिचुअल वाटर टू ट्रांसपोर्ट योर लाइफ अक्रॉस दिस मंडेन एग्जिस्टेंस. यू अलोन हैव टू क्रिएट दैट डिफरेंस. द पंडित्स एंड द ब्राह्मिन्स आर जस्ट कैटलिस्ट टू हेल्प क्रिएट दैट प्रोसेस. You have to build that from inside your heart. And when all of us experience this moment that Jatayu is having, my dear friends,

हित बस जिनकी मन माही तत मेरे फ्रेंड्स भगवान श्री राम सेज टू हिम तत हे मित्र हे फ्रेंड दैट देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज बियॉन्ड रीच ऑफ दोज हु हैव अदर्स इंटरेस्ट इन माइंड सी जटायु सेव द लाइफ ऑफ ट्राइड टू सेव द लाइफ ऑफ जानकी माता बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल You see, when you protect life, when you protect life, you protect God. That's by doing that action alone, he acquired the blessing of Bhagwan. Bhagwan speaks to him. Nathi jatayu. Tanu ji tat jahu mam dhama. Cast off this wonderful body, that this body that you have, this material body. The body of jatayu is a vulture. Cast off this material body, my friend, and ascend to Mamadham, my realm. Ascend to my

0: ब्रज रामचंद्र की जय।
1: To my father, of course, who would sing a bhajan before we come to the end of this evening's devotional exercise.
2: प्रेम से बोलो श्री राजा रामचंद्र की जय। उमावती महादेव की जय। यदि वो चीज़ अब बात

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: Hey my friends, Ricky Ramlagan here. In

0: अच्छा रुको एक मिनट।
1: यस सर। ये किस लिए सर?
0: अरे आज रामनवमी है।
1: ओ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
0: और सुनो ये सबको बांट देना।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: जय सीताराम डिवोटीज, वेलकम टू पूजा विधि। Let us all close our eyes, bow our heads, as we ask Bhagwan to continue to bless us on this.